0: लगाते आई पापा बतान
1: ऐ हो मना नगत गुडकुम पापा कोई ओके टकुम पापा कै टास के तो गोटंग मुटोंगा ना ला गुडक इसदा अकुम पापा वा पगिया पोन
0: अल्लाह यावा ओए इया अते इमो पापा
1: ऐसे अकुम पापा ना हंटर गरन मिसिंग पा
0: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!